चांदा ते है तू परमात्मा दे नाल मिलाप, पर किवें तेरा मिलाप परमात्मा दे नाल होवे। जेड़े गुण परमात्मा चाहुंदा है वो ता तेरे विच नहीं हन, क्योंकि चंगा इंसान किसी चंगियाई नाल है, शुभ गुना करके है, शुभ कर्मा करके है। जे शुभ गुण नहीं, शुभ कर्म नहीं, ते वो चंगा किवें हो सकदा है। साहिब कथन करदे ने कि परमात्मा नाल मिलाप ते हर कोई मनु

ना ही कोई ऐसा ढंग है ते ना ही परमात्मा मेरे मिठे बोलने जेड़े बोल बोल की मैं तेन अपने आप ते मोहित कर लवा। ऐसा गुण मेरे अंदर कोई भी नहीं है, मैं ते अवगुणा दा परिया। तकना के परमात्मा रूप कैसा वेखदा, शारीरिक रूप नहीं वेखदा। साहिबा ने बाणी विच कथन

कुलवंत है, कुलवंत है, पतवंता सज्जन है, जिद हिरदे अंदर प्रभु दे नाम दा निवास है। हे परमात्मा मेरे अंदर ते अवगुण भरे ने गुण ऐसा कोई भी नहीं। हे परमात्मा आप दी मंग है के बोल मिठे बोल, मैं जद बोलना कौड़ा बोलना, ते मेरा परमात्मा कैसा है, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। ओ मिठा बोल बोलदा है ते हुक्म करदा है भाई मिठा बोल बोल, जो बोल बोलने करके किसे दा भला हो, किसे दा मन ना टुटे। हे परमात्मा जेड़े गुण तेनू चाहिए ने मेरे विच नहीं, इसलिए मैं चंगा नहीं।

दिन दो मित्रां आपस विच कम पे आ। एक मित्र ने किया लै मित्रा मेरा कम करना ही, कह लगा चंगा कर देवांगा। समा पै गया भुल गया ना कीता। एक दिन मुलाकात

काती अकिर्त कन मैं कोई ना रखी, विश्वास काती अकिर्त कन, विश्वास काती किसनू कहिंदे ने, जेड़ा किसी नू प्यार विच लिया के बसा के मारे, अपना बना के मारे।

एक किस्सा तरती तेने से पानी मन्या गे समुंदर बड़ा वटे। एक वरी देवतिया ने विचार की थी, देखिए ता सही एडा वड़ा समुंदर है, इस विच की चीज है, केड़ी केड़ी वस्तु है। पर एडे वड़े समुंदर विचो चीजा लभनिया ते ए देखना कि समुंदर विच की है बड़ा औखा सी। सलाह कीती सारे क्यों ना समुंदर नू रिड़किया जाए, जिस तरह दही है दही दे विच लस्सी भी मक्खन भी, पर लस्सी ते मक्खन आपां नू उदों मिलेगा जदों आपां दही नू रिड़कांगे। ते दही नू रिड़कण वास्ते मदानी दी लोड़ है, रस्से दी लोड़ है, समुंदर नू रिड़कण वास्ते भी मदानी चाहीदी, रस्सा चाहीदा। पर समुंदर अथाह है, एडे वड्डे समुंदर वास्ते लकड़ दी मदानी बनानी बड़ी औखी। तां सारियां देवतियां सलाह करके मंदराचल पर्वत नू मदानी बनाया, शेष नाग नू रस्सा बनाया। शेष नाग नू उस पर्वत दे दुआले लपेटिया गया। एक पासियों उस सप नू देवतिया ने फड़िया, एक पासियों दैंता ने देवतिया विच विष्णु भगवान इंदर आदिक देवते ने, दूसरे पासे दैंत बड़ी शक्ति ते ताकत वाले। एक वरी सप नू शेष नाग नू देवत्या ने अपने वाल खिचिया, एक वरी दैंता ने सप नू शेष नाग नू अपने वाल खिचिया। ते ओ जड़ा पर्वत सी ओ समुंदर दे विच इस तरह घुमन लग पिया जिस तरह चाटी दे विच मदानी घुमदी। देवते उस शेष नाग नू अपने वाल खिचदे ने, दैंत अपने वाल खिचदे ने, ते पर्वत जिहड़ा है ओ समुंदर दे विच घुम रहे है। बड़ियां भयानक लहरां उठियां, जदों लहरां उठियां ते सारियां तों पहलां जहर निकलिया। जहर बड़ा खतरनाक सी, धरती ते सुटदे ने तां नुकसान बड़ा हुंदा है। ओ जहर शिवजी भगवान नू पीण वास्ते बेनती कीती गई। ओ सारा जहर शिवजी भगवान ने पीता, उस जहर दा असर शिवजी भगवान ते भी होया, उन्हां दे गले दा रंग नीला पै गया। इस करके शिवजी भगवान नू लोक नीलकंठ भगवान करके भी याद करते। जहर तो बाद अनेकां वस्तुआं निकलियां, जिन्हां विच काम तीन गऊ, पारजात दरखत, लक्ष्मी। अनेकां वस्तुआं निकलियां, लक्ष्मी नू विष्णु भगवान जी ने अपना लिया, पारजात दरखत नू इंद्र देवता अपने स्वर्गां विच लै गया। जिथे अनेकां चीजां निकलियां उथे अमृत दा कड़ा भी निकलिया, पर ए अमृत दा कड़ा दैंतां दे हाथ लग गया।

लभते कुछ नहीं। श्री रामचंद्र दे छड़े हुए घोड़े नु फड़ लिया। पिछे सेना सी, सेनापति ने कहा बच्चियो घोड़ा छड़ दियो। पर दोनों भरा कहन लगे छतरी हां इस तरह दे घोड़ा छड़ दे नहीं, जे हिम्मत है ते छड़ा लो। लड़ाई शुरू हो गई। इस लड़ाई विच दोनों भरावां ने सेना दा बुरी तरह नाश कीता। इथों तक हनुमान नूं भी दरख्त दे नाल बन दिता। लक्ष्मण वर्गे योधे भी दोनों भरावां ते काबू ना पा सके। आखिर श्री रामचंद्र नूं आप लड़न वास्ते आना पिया। इस लड़ाई दे विच श्री रामचंद्र मुर्शिद हो गए। ता उस वक्त सीता जी नूं पता लगा। उन्हें आके क्या बच्चियो एहो ही तुहाडे पिता श्री रामचंद्र हन। उदों पता लगा कि श्री रामचंद्र एहो ही नहीं जिहड़े साडे पिता ने। ता लिखिया है उस वक्त अमृत दा कड़ा फिर दोबारा मंगाया गया। उस अमृत दे नाल श्री रामचंद्र अते बाकियां नूं सुरत विच लियांदा। जिहड़ा अमृत बचिया जगह पुट के उस नूं दब दिता गया। त्रेते विच इह अमृत इस तरह प्राप्त कीता ते लिखिया है कि जिस जगह ए अमृत दा कड़ा दबिया गया कलयुग दे विच ए जगह प्रगट हुई। इस जगह धन गुरु नानक साहब ने भी आके चरण पाए और इस जगह नूं अजकल दरबार साहब श्री अमृतसर करके भी याद कीता जांदा है।

क्योंकि हर पक्ष देख के फिर चलना चाहिए ता आनंद और समझ पूरी आंदी। धन गुरु नानक साहब का अवतार होया सुल्तानपुर लोधी। धन गुरु नानक साहब जी ने जदों रहना शुरू किया रोज अमृत वेले नदी ते इशनान करन जांदे ने, अज भी इशनान करन गए। सेवक खलोता है देख रहे है, अचानक इशनान करदे हैं। धन गुरु नानक साहब ने पानी दे विच ऐसी झुब्बी लाई कि दोबारा उत्ते नहीं आए। सारे सुल्तानपुर लोधी खबर फैल गई कि गुरु नानक डुब गए, पर गुरु नानक साहब दे वड्डे भैण जी बेबे नानकी ओ कहन लगे मेरा वीर डुबिया नहीं, क्योंकि मेरा वीर ते डुबदिया नूं तारण वास्ते आया। दूसरे पासे धन गुरु नानक साहब चुभी मारी पानी विच पहुंच गए सचखंड। अकाल पुरख दे सामने खलो के हाथ जोड़े ते नाल

एक गुफा च बह जा। करोड़ा करोड़ा साल हवा खा के हवा पी के तेरा नाम जपा, सुपने विच भी मैं सोवा ना। इन्ना तेरा नाम जपा पर अकाल पुरख तेरे नाम दी कीमत।

सोत कंधे ने पुत्र तन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अकाल पुरख नु कहंदे ने ऐ अकाल पुरख तुसा कहा सी मैं अपना सुत तोहे निवाजा पंथ प्राचुर करबे को साजा ऐ दुष्ट दमन। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का पहले जन्म का नाम दुष्ट दमन सी। ऐ दुष्ट दमन मैं तैनू अपना पुत्र बना के इस दुनिया ते भेज रहे हैं एक नवा पंथ चलाने वास्ते। ऐ अकाल पुरख हुण मैनू दस मैं कहो जी शकल कहो जी सूरत इंसान नूं दिया कहो जिहा मैं पंथ।

उस वक्त औरंगजेब सी। औरंगजेब दे जासूसा ने औरंगजेब नू जड़ी खबर भेजी, उहदे विच लिखे है तकरीबन 50,000 दे करीब लोकां दा इकट्ठ सी आनंदपुर साहिब। संगत बैठी।

मानवीची कुर्बान खिची ते ललकार के गया साथ संगत मैनू एक सिर दी लोड़ पहला तक किसी समझ ही ना आई जदू दोबारा गया मैनू एक सिर दी लोड़ है हर पासे सहम छा गया कि एक ही हो गया गुरु साहब जी अपने सिखां दे सिर मंगण लग पए। तीसरी बारी

ते जड़े दूर दूर भज गए सन भजे भी जा रहे ने ते पिछे मुड़ मुड़ के भी देखते जाते ने कोई फड़न दे नहीं आ रहे पर पंजवी तो बाद गुरु साहब जी दोबारा नहीं आए जड़े बैठे सन प्यारो भी करते पर समझ नहीं आती कि गुरु साहब जी सिर क्यों मंगते बड़ी देर हो गई बैठे उड़ीकते पे ने हुण गुरु साहब जी उस तंबू विच बाहर निकले कृपान म्यान विच है चेहरे ते हुण रौनक प्यार है ਉਹ ਪੰਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਡੇ ਸਨ ਉਹ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਗਾਤਰੀ ਕਿਰਪਾਨ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੜੇ ਤੇੜ ਕਛਹਿਰੇ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਨੇ ਪੰਜੋ ਜਣੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਇਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਚੰਦ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਤਾਰੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ सामने सर्वलोह दा बाटा पे है जिद विच पानी पाए विशकार दो तारा खंडा रखे धन गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह हाथ दे नाल खंडा हिलान लग पे पानी दे विच ते मुंह दे नाल बाणी पढ़न लग पे अपनी निगाह खंडे ते टिकाई है खंडा पानी विच हिला रहे ने मानो ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਜਰੀਏ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ

कोई भरोसा नहीं इस शरीर दा। नाम दा तुलहा तैयार कर जिदे तो तू चढ़ के पवजल पार कर जावे। साहब कहंदे ने समा किसे दी इंतजार नहीं करदा। गुरसेवा ते भगत कमाई

सतगुरु कहंदे ने देह सदा नहीं रहनी। जिंदगी विच कोई ऐसा कम कर जा के लोग तेनु याद करन, भाई वाह फलाना ता एदां दा सी, बड़ा चंगा सी।

दूसरा रास्ता दूसरा मार्ग ते दूसरी जुगत साहब सानू दसते ने किते जातरक नू वेख लै पपीए नू वेख लै जेड़ा स्वाती बूंद ते पिछे पपी पपी प्या करदा साहब बाणी विच कहिंदे ने

उपदेश कर देने प्यारे, अहंकार नहीं करना, अभिमान नहीं करना। धर्मगुरु रामदास पातशाह हजूर कहते ने, अहंकारियां निंदका पिठ दे नाम देव मुख लाए। नाम देव वर्गियां नू सतगुरु ने अपने हिरदे नाल ला रहा, अहंकारियां नू पिठ दे दिती मुख नहीं लाया। जिना नाम जपया सिमरन कीता, भावें कोई वड्डा है भावें कोई नीवे, लेकिन भाई सिमरन करन वालियां नू, नाम जपण वालियां नू, सेवा करन वालियां नू मेरे साहब अपने गल दे नाल ला लेंदे ने। हजूर कहिंदे ने, मान ना कीजै शरण परी जाए, हंकार ना कर प्यारे, अभिमान ना कर, गुरु दे चरणा विच उहदी शरण विच आ जाए।

शैव फरमान करते ने गुरु कितना प्रसन्न है, गुरु कितना दयाल है, गुरु कितना रहमतां दा साईं है। एक पल भी नहीं विछड़दा प्यारिया, पातशाह तू मेरे ते कृपा कर, किड्डी कृपा कीती है, कितनी रहमतां कीतियां ने, कितनियां रहमतां दा मीह बरसाए मेरे ते। धन देंदी साच सनेहा, एक मेरा सुनेहा है प्याच्छा,

गुरु नानक दी मोर ला के धन गुरु अर्जन पातशाह साहब कृपा करके आंदे ने प्यारे कौ नानक छंत अनंत ठाकुर के उस मालिक दे कितने मैं गुण गाव बेअंत है मेरा पातशाह बेअंत है मेरा मालिक बेअंत है रहमतां दा साईं कितने गुण गायन करन हजूर बाणी विच कहिंदे ने

भाई गुरु दा प्यारा मेनू मिला दे, कोई ऐसे गुरु दे प्यारे नाल मेल करा दे कि तेरे दर्शना दी जड़ी आस लगी हुई है वो मिट जावे। आओ भाई अरदास करिए, गुरु चरणा विच तरला करिए। गुरु अर्जन पातशाह साहब अपने रसना तो आंदे ने मन ऐसा नहीं हो करे, ऐसी प्रीत कर लै जिवें मछली ने पानी नाल कर ली, चात्रक ने पपिए ने स्वाति बूंद नाल कर ली है, भंवरे का प्यार फुल दे नाल है सुगंधी नाल है, जिहड़ी प्रीत कदी टुटे ना पातशाह मेरा मालिका एहो जी प्रीत कर, एहो जी कृपा कर मेरा मन भी तेरे चरणा नाल।

हे करुणा निदान, हे पतत पावन, कृपा निदान जगत गुरु, तेरे तो बिना मैनु कोई आसरा नहीं। किस ही

तो विछड़ के मेरे मन की जो दशा है मैं किथे दसन जावा मैं मन की हालत किथे जाके कूकां ते पुकारा तेरे दर तो बिना कोई आसरा नहीं मेरे मालिक रहमत करो ते जोड़ लवो टुटे होए नू विछड़े होए नू अपने चरणां नाल जोड़ के सतसंगत दा आसरा बख्शिश करो इथे मेरा मन टिक जाण दा

जिथे भी कोई रब तू भुलिया इंसान। गुरु नानक बाबा नू नजर आया सतगुरु उथे आप पुजे। संसार दी रीति है भई महापुरश वली पीर पैगंबर उन्हां कोल दुनिया जांदी है, पर गुरु नानक सच्चा पातशाह आप लोगां कोल जांदे रहन। बाबा काशी गए, बनारस गए, हरिद्वार गए, गया जी गए। क्यों गए? भई लोगां दा तीर्थां ते इकट्ठ हुंदा सी ते बाबा जी उथे अपने विचार सुनांदे सन, लोगां नू सीधे मार्ग ते लांदे सन। बटाले दे लागे बिल्कुल नजदीक, क्योंकि बटाले विच गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दे सौरा परिवार सी, ते लागे अचल बटाला है। ओ सिद्धां दा बहुत वड्डा गढ़, शिवरात्रि दा मेला लगा होया सी ते गुरु नानक ने सुनहरी मौका तकिया, कहन लगे मर्दानिया चल। गरीब नवाज पातशाह सत बचन, भाई साहब भाई गुरदास जी

लगी बरसन लक्ष्मी। बाबे दा आउना सुन के सारे लोग उधर नू आ गए जिधर गरीब नवाज पातशाह बैठे सन। लगी बरसन

अपनी शक्ति नाल ओ जेड़े लोटे विच लोग पैसे पा रहे सन ओ लुका दिता। भाई साहब भाई गुरदास ने

खादी खुण सुजुगी सरा। जिस वेले बंदे नू अपनी हार हुंदी दिस पवे ना, ए आम बात है, फिर वो झगड़े ते उतर आंदा है, और तां पेश जांदी कोई नहीं। जोगियां ने गुरु नानक बाबा नाल बहस करनी शुरू कर दी। भाई साहब भाई गुरदास जी

0: ए सुन बचन जुगी सरा।
1: भाई साहब कहते हूं झगड़ा कर लगे ने, गुरु नानक नु डराउन लगे ने, अपनी शक्तियां दा प्रभाव पाके

कोई उड़न वाला पंछी बन रहा है, कोई बघियाड़ बन रहा है, कोई चीता बन रहा है, कोई शेर बन रहा है। एक पर कर कर के

मित्र हुंदा ही होए जिहड़ा मनुख दा भला लोचे, जिहड़ा मित्र मिले ते बुरे पासे लै जा, भला फिर होर दुश्मन दी की लोड़। जिहड़ा अखौती मित्र मिले, मित्रता दे नां थले बुरे पासे लै तो बुराइयां वाले पासे प्रेर लै जा, गलत कम्मां वाले पासे लै तुरे, या जेड़े मित्र दे आया जीवन दा कीमती समा आ जाई तुरिया चला जा, गलत गल्लां विच, निंदा चुगली विच, गलत खेडां विच, गलत कारियां विच मनुख दा कर्म भ्रिष्ट हुंदा चला जावे, वो मित्र नहीं दुश्मन है। क्योंकि जो कर्म असी करने ने उनका फल साडे सामने होना, अज नहीं कल नू, ऐस नहीं अगले जन्म नू, साडे कीते कर्म साडे सामने आ जाने। ते जेड़ा बंदा गलत कम्मां दी प्रेरणा करता है, उहदे नाल वड्डा दुश्मन होर कौन होवे। पर मनुखे भुलेखे च पिया होया है, जिहदे नाल जी परच जावे, जेड़ा कोल बह के चार गल्लां करे, सुने सुनावे, उहनूं असीं मित्र समझने। हालांकि साहिबां ने पावन बाणी च बड़ी सख्त प्रेरणा कीती है, साहिब कहिंदे ने कर मित्राई साध सिरसा, साध सिओ नेचर पावे थां। जे मित्रता करनी है ना, नानक कचड़िया सो तोड़, टूंड सज्जन संत पकिया, तू मित्र लभने ने ते पक्के मित्र लभ, कचिया पल्लिया दे नाल की मित्रता पाउणी है, जिन्हां दा अपना कोई स्टैंड नहीं। अज कम करदे ने कल नूं पछताउंदे नजर आउंदे, अज कुकर्म करदे ने कल नूं उहनां कुकर्मां दे फल दे सामने रोंदे नजर आउंदे। निरा ही नहीं, ए जे कच्चे मित्र तेरे भी नाल निभ नहीं सकने, ओए जीवंदे विछड़े, जूंदियां ही जिंदगी च कोई औखा वक्त आ गया ते छड़ के तुर जाणगे। तू उहनां मित्रां नाल सांझ पा जेड़े साहिब कहिंदे ने ओए मोया ना जाही छोड़, इथे भी तेनू सुख देण ते दरगाह विच भी तेरा साथ दे सकण, उथे भी तेरी बौड़ी कर सकण, जिन्हां दे सदका जिन्हां दे नाल लग के उथे भी तेरा भला हो सके। संसार ते भी ऐसा तुसां वेखिया है, किसे भले आदमी नाल मित्रता ही होवे, किसे नेक बंदे नाल मित्रता ही होवे, कोई औखा सौखा वेला आ जावे, वाज मार लो, बुला लो मित्र नूं वी मैं फसिया, गलत कम कर बैठा, भुल हो गई, गलती हो गई, या वैसे ही फस गया, मित्र आ जावे। जिस सभा सोसायटी दे सामने, जिस समाज दे सामने असीं मुजरम हां, उस मित्र दे कोल आके बह जाण दे नाल फिर पंच कहिंदे, ओह कहिंदे ने भई तू आ गई है, तेरा मित्र इस करके छड्दे ने, तेरे कहण ते छड्दे ने, तू इहदी शादी भरना ते छड्दे ने, तेरा मित्र इहते लिहाज करदे ने, तेरा पुत्र इहते लिहाज करदे ने, तेरे भरा करके छड्दे ने। चंगे बंदे दा प्रभाव पैंदा, जे किते उन्हां लोकां नाल जिन्हां ने दरगाह तक निभ जाना साडी सांझ होवे, उन्हां दे सदका उत्थे भी बख्शे जा सकदे, बल्कि उत्थे बख्शे जाण दी गल जे एक पासे रख दईए, जीवन विच ही मनुख भले लोकां नाल मिल के उन्हां दी रंगण च रंगिया जाके, ऐसी दशा आउंदी नहीं, ऐसी नौबत आउंदी नहीं कि मनुख कोलों कोई लेखा पुछण जोगा रह जाए। चंगे मित्रां ने मनुख नूं हमेशा सुधारिया, मित्र चंगा होए जिहड़ा सामने बैठ के प्यार नाले गल समझा देवे। सजना जीवन विच विकार सोभा नहीं देवे, माड़ियां आदतां माड़े कर्म तेरे जीवन नूं तबाह कर देणगे। ते ओ मित्र बड़ा चंगा है जेड़ा बांह फड़ के गुरुद्वारे लै आवे, गुरु नानक दे दरबार विच लै आवे, जेड़ा जिस वेले मेरे गुरु की गल करे, प्रभु की गल करे, बाणी की गल करे, जेड़ा मित्र ईश्वर की गल करे, भगती की गल करे, धर्म की गल करे ना, उहदे नालों चंगा मित्र सानूं संसार ते होर कोई नहीं मिल सकता। असां तां इह वेखिया आम तौर ते कि जिस मित्र नाल मन परच जावे उह चंगा मित्र है, या जिस मित्र दे मिलिया कुछ चार पैसिआं दा लाभ हुंदा होवे उह चंगा मित्र है। लेकिन महाराज कहिंदे ने उह मित्र जिहड़ा प्रभु नाल जोड़दा, उस मित्र तों मैं अपना तन मन धनवार ने कर दिया, तन मन धन अर्पो तिसे प्रभु मिलावे मोहे, जेड़ा मेरी प्रभु नाल सांझ पुआ दे
ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਪਾਉਣ ਬਾਣ ਦੀ ਬਚਨ ਕਿਹਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਪਰਿਓ ਠਾਕੁਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤਿਨਾਂ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਮਨ ਧੀਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਚ ਟਿਕੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣਾ ਲੋੜਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਣਾ ਲੋੜਨਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਮ ਹਰ ਸੇਤੀ ਰਾਤੇ ਸੰਤੋ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਮਨ ਰੱਖਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਰੰਗ ਚ ਰਹਤੇ ਹੋ। ਤੁਮ ਹਰ ਸੇਤੀ ਰਾਤੇ ਸੰਤੋ, ਨਿਭਾਹ ਲਿਓ ਮੋਕੋ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਤੁਰੋ ਤੇ ਨਿਭਾ ਦਿਓ ਤੁਰ ਤੱਕ, ਵਿਧਾਤੇ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਓਣ ਪਹੁੰਚਾਵੋ ਦਾਤੇ, ਉਸ ਦਾਤੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਿਓ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਚਰਨੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਪਏ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿੱਤਰ ਤੋਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਮਾਰਨਾ ਪਏ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿੱਤਰ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਚ ਬੇਅੰਤ ਵਾਰ ਐਸੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਮਿੱਤਰ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਸੀ ਸਾਂਝ

तू बहुत सियाना है, बड़ा समझदार होगा, फिर भी तू उन्हां नूं पुछ लै, ताहू खरे सुजान वंजा एनी कपड़ी, जेड़े इन्हां पानियां चो लंघे होए ने किसे नवे पतन ते आ जावे, किसे नवे नदी दरिया ते पहुंच जावे, उथो लंघन दा मसला पैदा हो जावे ना, तू भावे किड्डा वड्डा तारू है, फिर भी तू उन्हां नूं पुछ लै जेड़े इस राह तो लंघे, पता नहीं किथे भंवर होवे, किथे पानी दी की दशा होवे, इस राह विचो लंघन वास्ते चंगा रवे जे तू किसे तारू नूं जेड़ा इथो लंघिया होवे उन्हूं पुछ लवे, इथो तू किवें लंघिया सी, की हालत है इथो। इसे तरह धर्म दे मार्ग ते बंदा किन्ना होशियार ते चलाक हो, धर्म दे मार्ग ते उन्हां लोकां दे नाले गल कर लैणी, लालन रावया कवन गति री, तू किस तरह पति नाल प्यार कीता है, तू प्रभु नाल किस तरह प्यार पाया है, प्रभु नाल तेरी सांझ किवें पक्की होई है, तू प्रभु नूं किवें पाया, सखी बतावो मुझे मतीरी, मैनू भी कोई मत दे, चाहे पुछो सुहागणी तुसी रावया किन्नी गुणी, जिन्हां सुहागणा ने घर स्वर्ग बना रखे ने, जिन्हां दे घर दे विचों खुशियां ते खेड़ियां दी खुशबू उठती है, उन्हां नूं पुछ लैणा चाहीदा है इह खुशबू तुहानूं किवें प्राप्त होई, इस घर नूं स्वर्ग तुसां किवें बणाया, चाहे पुछो सुहागणी तुसी रावया किन्नी गुणी, ते जिन्हां घरां चो कलेश उठदा होवे, जिथे प्यार दी कोई सांझ ना होवे, उन्हां नाल गल करन दी भी की लोड़ है, मत उन्हां नूं कोई कुमत ऐसी मन च आ जावे, उन्हां दे कोलों कोई ऐसा रंग चढ़ जावे कि अपना भी जीवन खराब कर पई, उन्हां दे नेड़े होईए जिन्हां दे जीवन च सुख नजर आउंदा, जिन्हां दे जीवन च आनंद नजर आउंदा, चाहे पुछो सुहागणी तुसी रावया किन्नी गुणी, ओ जेड़े संत भगत परवान जो प्रभ पाया, सेई विचखण जंत जिनी हर ध्याया, जिन्हां दे बारे सुखमणी साहिब पढ़ने जो जाने ते सदा सुख होए, आप मिलाए लए प्रभ सोए, ओ धनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत, धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया, जो आप चल सकदा है धर्म दे मार्ग ते किसे होर नूं तोरन दी समर्था रखदा है, एहो जिहे बंदे नूं लभ के उहदे नाल मित्रता पाई सोभा लाहेवंदी रहिंदी, ते जिस दिन कोई मिल पैंदा है, धन गुरु नानक दा सवारिया है भाई मन सुख, जिस दिन महाराज शिवनाभ नूं मिले सी, ओ वर्तां पूजा करमां बेहद तरह दीआं रस्मां च फसिया आ बंदा, जिस ने भाई मनसुख दे दर्शन कीते हैरान हो गया, ए तां कोई वर्त नहीं रखदा, ए तां कोई पूजा नहीं पिया करदा, ए तां कोई पखंड नहीं पिया करदा, ए तां कोई रचना नहीं रची बैठा, मेरे सारे राज विच मेरे हुक्म अनुसार धर्म कर्म क्या चलता है, ते ए बंदा उस तो बागी होके इन्हे नेत्रां च मस्ती है किस तरह हो सके, उन्हूं कहिंदा सजना ए नेत्रां दी मस्ती, ए बोलां दी मिठास, ए जीवन दे विच हुलारा ते आनंद तैनूं कित्थों मिले, ते भाई मनसो कहिंदे ने गुरु नानक दी मत लै के, गुरु कोलों समत लै के, गुरु कोलों जज सिख के जीवन दा ए आनंद अपने आप आए, चरणा ते पै गया, कहन लगा सजना मैनू भी दस फिर ए आनंद मैनू किवें आ, भाई मनसुख फिर अपनी पूजा करवाउण नहीं बह गए, राह दस दिता, कहन लगे प्यार ओहदे नाल कीता सी उहने बांह फड़ के अपने बना लिया, प्यार ओहदे नाल करते तैनू भी बांह फड़ के अपना बना लेगा, कहिंदा मैं लब्भा कित्थों प्यार किवें करां, भाई मनसुख हस पए कहन लगे महाराज शिवनाभ जे प्यार करके प्यारे नूं लभणा पए फिर काहदा प्यार कीता, तू प्यार करके प्यारा आपे खिचिया तुरिया, प्यार विच इनी खिच पैदा कर ओ आपे तैनू लभदा फिरे, तू उहनू लभण ना जावे बल्कि तैनू ओ लभदा फिरे, ऐसी चिणग ला दित्ती, ऐसी रचना रच दित्ती उस राजे दे अंदर, धन गुरु नानक खिचे चले गए, राजे शिवनाभ दे प्यार ने गुरु नानक साहब नूं संगला दीप खिच लिया, कितने ओ प्यार करना सानू भी आ जाए, या इहो जिहा प्यार करना सानू

मन गुरु चरणा दे नाल जोड़ के वाहे गुरु शब्द दा उचारण करदा है उस नूं एडा वड्डा फल प्राप्त है के जैसे अठ सठ तीर्थ परस किए अठ अठ तीर्थां दे इशनान दा फल एथे ही बस नहीं जैसे अठ सठ तीर्थ परस किए जुग चार चढ़ो कैलाश रहो कोई चार युग कैलाश पर्वत ते बह के तप कर लवे और इस दा महात्म एथे ही बस नहीं अगलियां तुकां विच सरवण।

बेर कुरुक्षेत्र में अश्वमेध जग अभंग ठयो, उन अमृत नाम विशेष इति जिन एक बार श्री वाहेगुरु कहो। आख्या वाहेगुरु जपन दा इड़ा वड़ा महात्म क्यों है? ता भाई साहब अगली पौड़ी विच बयान कर दे अन भाई वाहेगुरु शब्द

दिना विच्छी सिखा ने शंकरगढ़, मिचनी, बालासार ते पिशौर दे किलियां नू जित लिया। सिख राज दिया हद्दा काबल वालू वदन लगिया। चार चुफेरे सरदार हरी सिंह नलुए दी बहादुरी दिया तुम्मा पै गईया। नव्या किलियां नू जित पुराणिया दी मुरम्मत कराई। पठाना विच हलचल मच गई। ते फिर एक रोज सरदार हरी सिंह ने हल्ला बोल दर्रा खैबर दे बूहे जमरौद दे किले उत्ते केसरी झंडा जा चलाया।

जमरौत दी जंग विच सिखा ने पठाना नू ऐसी मार मारी कि पठान कन्ना नू हथ ला तौबा तौबा कर उठे। काबल दियां गलियां बाजारां विच नलवे दियां गल्लां होण लगियां। नलवे तो डरदे पठान सूरज डुबदे सार घरां नू जंदरे ला अंदरी लुक जांदे। चार चुफेरे मरियां वर्गी चुप छा जांदी। अपने रोंदे न्यारियां नू चुप कराउण लई पठानियां इउं डराउंदियां।

0: सिख राज दिया हद्दा, दिनों दिन काबल वालू वद दिया देख, पठार सोची डूब गए।
1: अमीर काबल दोस्त मोहम्मद खां घबरा गया।
0: सरदार हरि सिंह नलुए दी चढ़त, पठाड़ा नू अपनी मौत दिसन लगी।
1: कई हजार मुल्किया कट्ठा कर शमी खान ने अपने दादे परदादे दी बहादरी दे वास्ते पौंदिया इंज आखिया,

0: 28 अप्रैल 1837 का सूरज चढ़दिया ही 1000 सिंघा ने पठाना नू जा ललकारिया। सत श्री अकाल दे जयकारिया नाल आसमान गूंज उठिया, तलवारा पिड़िया,
1: धरती लहू लुहान हो गई,
0: लोथा ते लोथा चढ़ गईया। गुरु दे सिंघा ने ऐसे हद दिखाए कि गाजिया दे दंद जुड़ गए। दूजे दिन तोपा दे गोले दागे, रात पैंदिया ही जमरौद किले दी सज्जी कंध विच पार पै गया।
1: हुण महा सिंह अगे 3 काम सन, किले दी राखी करना, कंध दा पार पूरना, ते पिशोर बीमार पए सरदार हरी सिंह नलुए नू सुनेहा पहुंचाना।
0: सिंघा दे रोक दिया बीबी हरशरण कौर जत्थेदार तो चिट्ठी लै पेश बदल, किले विचो निकल तुरी, रातो रात पेंडा मुका, पिशोर च सरदार हरी सिंह नलुए नू जा चिट्ठी पुचाई। पढ़ के सरदार दिया अखा विच खून उतर आया, डौले फरके तलवार दे मुठे ते हथ गया। ऐ सोच के कि मेरी जिंदगी ही सिख राज दी जिंदगी है, ओ उठ बैठा। खालसे दी तलवार आज हिंदुस्तान दा इतिहास बदल सकती है, मैं जान नालों सिखी शान नू प्यारी समझदा हां। ऐ सोच दिया ही चट सिंघा नू इकट्ठे कर सरदार हरी सिंह नलुए ने इंज ललकारिया।

0: 3 अप्रैल 1837 दा सूरज चढ़दिया ही सरदार हरी सिंह नलुए ने सिख फौजां समेत बोले सो निहाल दा जयकारा गजा शम्मी खां दी फौज दा जा टाकरा कीता। तलवारा बरछिया विच्चों मौत दे चंग्यारे निकले, लोथां नूं लिताड़ दे सिंगा दे घोड़े अगे वधण लगे, मनुखी सिर मतीरिया वांग पैरां विच रुलण लगे।
1: धरती लाल सूही हो गई, सरदार हरी सिंह नलुआ ते शम्मी खान मैदाने जंग विच एक दूजे नूं इउं टकरे।

0: सरदार हरी सिंह ने फट नू कुट के बन लिया, कोड़े नू जमरौद किले वालू मोड़ दिता। किले विच पहुंच दिया ही जत्थेदार महा सिंह ने नलुए सरदार नू कोड़े तो ला पलंग उत्ते लिटा दिता। तकलीफ वद दी गई,
1: अद्धी रातों शरीर निढाल हो गया, जान साथ छड़न लगी, पर सरदार दे मुख ते लाली उसे तरह डलक रही सी, अजे भी सज्जा हाथ तलवार दी मुठ उते ही सी।
0: मैदानों परत के आए सिंगा तो लड़ाई दा हाल पुछया, जित दी खबर सुन गज के जयकारा बुलाया।
1: ते फेर सारे सिंगा वल तक सरदार हरी सिंह नलुए ने हौसला दिंदे आखिया,
2: खालसा जी, मैनू अकाल पुरख दा सद्दा आ गया है। मैं पंथ वास्ते जमया सी ते पंथ वास्ते शहीद हो रिया, मेरे पिछों घबराउना नहीं, तुसी खालसा राज दे राखे हो, खालसा जी जित्ता जारी रखनिया, पठान मुड़ के हिंदुस्तान वल मुंह ना कर सकन।
1: एह कहंदिया ही सरदार हरी सिंह नलुए ने अंतम सुनेहा इंज दित्ता।

0: सब इस तुक नु गायन करो और सिंह दिस इज द शब्द ऑफ धन गुरु रामदास साहेब सोट महला
1: चौथा
0: चौथा सब मिलके करो कीर्तन।

होतना बारंबार जो बंसल पाके पोंगिरे बोरना लागेगा जो बंसल पाके पोंगिरे बोरना लागेगा गुरसेवा ते पद कमाई तब ए मांस दे ही पाई मानस जन्म अमूल पायो वृथा काए गवाओ गुर सेवा ते भगत कमाई सब ए मानस दे ही पाए इस दे को सुरे देव सदे पज हर किसे पजो गोविंद भूल मत जाओ पजो गोविंद भूल मत जाओ मन चमका ही लाओ

जब लग बिकल पाई नहीं बारी पज लै रे मन सारे पानी अब ना पजस पजस कब पाई आवे अंत ना पजया जाए ए तेरे अवसर ए तेरी बार

सरो एतन मिथ्या जानो या भीतर जो राम बस है साचो ताए पछानो पई प्राप्त मान देहरिया गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया।

गोविंद भजन बिंद्र थे सब काम जो किरपन के नरार्थ दाम। गोविंद भजन बिंद्र थे सब काम जो किरपन के नरार्थ दाम। फिरत बोते जुगहारे हो फिरत

मन के अंदर लब गुरमुख पाया, मानस जन अंदर लब गुरमुख पाया, मन तन होए चलंब जे सतगुर पाया, चले जन सवार वखर सच लै, पत पाए दरबार सतगुरु शब्द पै, पत पाए दरबार सतगुरु शब्द पै, चले जन सवार चलिया पक्ष जन सवार वाजा वाए सी, चलिया पक्ष जन सवार वाजा वाए सी।

कई जन्म पैकेट पतंगा, कई जन्म गाजर मीन कुरंगा, कई जन्म पंखे सर्प होयो, कई जन्म पंखे सर्प होयो।